संसार ते आके प्यार ही वंडिया है, पर संसार ने सदा ही रब दे प्यारिया नू दुख ही वंडिया है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हंकारी पंडिया ने जदों देश परदेशा विच जाके हुक्मनामे भेज दिते भाई बड़ा यज्ञ कर रहा है कबीर, ता अकाल पुरख वाहिगुरु आप आके फिर सारिया नू भोजन छकाया, अपने भगत की रक्षा की, अज भी रक्षा कर रहे। कबीर जी कहंदे ने जदों सानू जंजीरां विच जकड़ के गंगा दी लहर विच दबो दिता गया, फिर सानू डर नहीं लग्या, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु अंग संग है। फिर डर कादा भाई, ना ओए मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे, जिन्हां दे हिरदे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम है, वो डरदे नहीं भाई, अंग संग हन। निर्भो दाता हर जीव मेरे नाल, निर्भो दाता अकाल पुरख जिन्हां दे हिरदे विच वस गया, उन्हां नूं वही किसदा डर है। जिवें कबीर जी कहंदे हन, मन ना डिगे तन काहे को डराए।

لاہور جا پہنچ شہر تو باہر جا کے ڈیرا لایا شیٹھ دنی چند اتوں لنگ رہا سی درشن کیتے ٹھنڈ پی بینتی کیتی مہاراج میرے گرہ لکھے چرن پاؤ تن گرو نانک پاتشاہ تارن جو آئے سن آپ دنی چند دے گھر گئے تے پھر کی تکیا ब्राह्मणा नु भोजन छकारे बड़े पदार्थ बनाए हुए हैं धन गुरु नानक पातशाह पूछन लगे दुनी चंद आज आ ब्रह्म भोज कैसा कर रहे हो कोई खास दिन है तो दुनी चंद ने आख्या महाराज अज मेरे पिता दा श्राद्ध है ते 100 ब्राह्मण नु सद के भोजन छकाया धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई तेरे पितर रज गए हन आख्या जी ब्राह्मण तो एवं कह रहे सी ओ तां कहंदे तुर गए हन भाई दुनी चंद तेरे पितर बड़े खुश हन बड़े सुखी हन स्वर्ग विच बैठे आनंद मान रहे हन ता धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे दुनी चंद तेरा पिता ता 3 दिन तो भुखा है 3 दिन तो उसनू कोई खुराक नहीं मिली ओ शेर दी जूनी विच है महाराज मेरा पिता बड़ा धर्मात्मा सी पुन दान करन वाला सी ते शेर दी जूनी विच है धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे इसका जवाब तेनू तेरा पिता ही देवेगा तू डरी ना आ ऐश दशा वल चला जा इतनी दूर जाएगा ते शेर बैठा होवेगा डरी ना ए भोजन उसके अगे रख दे ओ शक लेगा ते फिर ओदे विच समर्था आ जाएगी तैनू दसन दी शेख दुनी चंद जिवें साहिब जी ने दस्या सी जाके कीता जंगल बियाबान विच चला गया अगे सचमुच एक शेर बैठा है जा भोजन अगे जा

सुख प्रजा दी सेवा करके भुखे नूं भोजन देना, लोड़ अनुसार कपड़ा लीड़ा गरीबां नूं देना, उन्हां दीआं लोड़ां पूरियां करनियां। जे ए सारा धन तू नाल ले जाना चाहुंदा है ना, तां संसार विच जितने भी गरीब गुरबा है सब

जीवन आनंदमय हो गया, जिस जीवन नु कोई डर सी ना भाई कोई धन चुरा ना लवे, आज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी नु आके कहन लगा, महाराज हुन कोई होर सेवा बख्शो। ता गुरु नानक सचे पातशाह जी ने सूई दिती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै अमानत।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

करोड़ा वेहा गंगा ते इशनान कर लो। एडा फल प्राप्त होंदा है भाई महापुरखां दे जपन वालियां दी चरण धूड़ी प्राप्त हो जा ते गुरु दे चरणा दी धूड़ी भी उन्हां नूं नसीब हुंदी है जो जपन वालियां दे चरणा दी धूड़ी मस्तक ते लाउंदे।

बहुत सुख है, पूर्ण सुख है। प्रभु सिमरन विच अधूरा सुख नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, अल्प सुख नहीं है, परम सुख है, पूर्ण सुख है। ते गुरु नानक दा दर संसार दे लोकां नूं दुखी देखना नहीं चाहता, देख ही नहीं सकता। गुरु नानक दे दर ते आपां पढ़दे हां, गुरु नानक देखदे ने संसार सुखी नहीं, ते दर्दमंद गुरु नानक लोकां नूं सुख वंडण तुर पैंदे ने। बाबा देखे ध्यान धर जल्दी सतपुरमी दिस आई, उठ के तुर पैंदे। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह अपने माल की दरगाह चरजोई कर दे, जगत जलंधा रख ले अपनी कृपा दा, जित द्वार है उपरे तित है लेओ बार, जिवें बचदा ही बचा। इन्हां तपदियां सर्दियां नूं जिवें शांति दे सकना मेरे साहिब उवें ही दे। जिस राह तो जिस दर तो कोई तेरे नाल जुड़दा है जोड़ दे। साहिब टुटे हुए मनुख नूं, बिखरे हुए मनुख नूं, बेचैन मनुख नूं निरंकार नाल जोड़ के सुखी कर देना चाहते, इना भर देना चाहते ने सुख नाल के मनुख आप ही सुखी होवे ते आले दुआले नूं भी सुख बने। इत्थे भी कहंदे ना, आप ही सुख पा, होरना नूं भी जपा ते उन्हां नूं भी सुखी कर। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, जप के सिमर के मुड़ मुड़ के सिमर के सुख लै लै, आनंद लै लै। सर्व कल्याण सुख निध नाम, नाम वो खजाना जिस सारे सुख ने, ते जिन्हां ने इस सुख नूं प्राप्त करने का यतन किया है उन्हां नूं जे किते किनका मात्र भी इसका सच्ची मुची प्राप्त हो गया, थोड़ा जिहा भी उन्हां नूं रस आ गया है। साहब कहंदे ने मैं उहदी वडियाई नहीं दस सकता, संकल्प ही बख्शिया है, आपां संकल्प करिया करिए, मन विच एक इच्छा करिया करिए, आशा करिया करिए। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, जपदा हां जप जप के सुख पावांगा, कल कलेश तन माहे मिटावो। जीवन विच शरीर विच वरते हुए कलेश पाप सारे धोते जाणगे। सिमरो जात विसुंधर एक है, वो जिहड़ा विश्व दा मालिक वाहिगुरु अकाल पुरख है, उस नूं याद करा, उस नूं चेते करा, उस नूं जपा, जिस नूं अगे भी बड़े याद करदे। नाम जपत अगणत अनेक है, वेद कुरान सिमरत ये सारे जिसकी सिफत करदे ने, शुद्ध अखरां नाल जिहड़े उहनूं याद करदे ने, शुभ बचना नाल शुभ भावना नाल जिहड़े उहदी उस्तत करदे ने, उस नूं याद करन वास्ते एक अखर दी लोड़। कैसी कमाल दी गल है, साहिब कहिंदे तेरे हिरदे च वस जाए ना, पढ़दे आ, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। उहनूं याद करन वास्ते एक अखर दी लोड़ है, और वो अखर कैसा है, सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम। वाहिगुरु अकाल पुरख नूं चेते कराउण वाला कोई एक नाम। वैसे सतगुरु ने धन गुरु नानक ने संसार नूं उसकी महिमा बेअंत, उसकी लखी ना जाई जाण वाली लीला, उसकी महान वडियाई नूं अचलता दे रूप च मानदे, आनंद दे रूप च, विस्माद दे रूप च आनंद लैके मानदे होए।

आख्या फरमांदी आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है। ये आत्म रस की खुराक है, आत्म रस जै जाने सो है खालस दी।

0: संत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पार वारिया
1: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी
0: अंत न पावत देव सबे